0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா.

ये आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 12 अक्टूबर सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त अर्चना का है जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ। भारत माता, जिस पर हम सभी को गर्व है और उसकी जयकार हम सदा करते हैं।

श्रोता अर्चना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी समय है। 6:25 में वक्त है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, 6:30 का वक्त आपका जाना पहचाना श्री रामचरित मानस से संगीत में पांचे कराएंगे आपके लिए। कुछ पुराने फिल्मी गीत होंगे कार्यक्रम खुले पिछले गीत में सुबह 6:40 पर। हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह सुनेंगे सुबह 7:00 7:05 पर आप कृषि संकेत सुनेंगे। आपके फरमाइशी गीत सुबह 7:20 पर कार्यक्रम मन जाएंगे। गैर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:45।

अब बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए।

0: लोक संगीत लेकर आएंगे सुबह 8:15 और 8:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बिंदिया।
1: एक जमाने से कहानी है सुना है या कहानी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा। डाउनलोड
2: बेस्ट OTT ऐप नाउ।

0: सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सुनिएगा फोन करें लोकगीत सुने। 11 बजे होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, शाम 5:02 का वक्त युववाणी कार्यक्रम का होगा और 5:30 आप सुनेंगे संगीत सरिता।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है

श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सदाबहार गीतों का आनंद लेंगे और 6:45 पर लोक गायन सुनेंगे। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आप इसकी 138वीं कड़ी सुनेंगे, जिसमें मुख्य गायक स्वर ए हरिहरन, मिताली और उत्तरा खेल करके हैं।

बड़ी चतुराई से मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्य कुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बार की सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें यह भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वे मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

सभी श्रोता श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 138वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर रहे ए हरिहरन, मिताली और उत्तरा केलकर। सुबह के 6:40 हुए हैं। समय है कुछ पुराने फिल्मी गीत सुनने का, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत, जिसे रवि ने संगीतबद्ध किया, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा और मोहम्मद रफी ने गाया। गीत है फिल्म नई रोशनी से।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096977।
2: अब सुनते हैं राजा मेहंदी अली खां का ये गीत, मदन मोहन के संगीत में आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आपकी।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं सांझ और सवेरा फिल्म से ये शीर्षक गीत, आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, शंकर जयकिशन का संगीत,

भूले बिसरे गीत। अभी श्रोता इस कार्यक्रम में चंद पुराने फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। अनुप्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रोडक्ट का, हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्ण रीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यं आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनं, अन्तर्जाल सेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लंघनाय अवमानना कार्याचरण सम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षानां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले एट एआईआर न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च न्यूज ऑन eir.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
1: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इंदौरनगरस्य होलकर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 7 बजे है, आपको इंतजार होगा कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। श्रोताओं, आज बात करते हैं अपने व्यक्तित्व के गुण की। जी हाँ, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या ना करना। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा गुण है, एक सकारात्मक और स्वस्थ मानसिकता की ये निशानी है और ये गुण हमारे मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर गौरतलब बात यह है कि कभी कभी होता यह है कि मनुष्य खुद का सुख तलाशने की जगह दूसरों की परेशानी और तकलीफ में अपनी खुशी तलाशने लगता है और बस यही से शुरुआत होती है अपना मन अशांत होने की। और फिर हम चाहें भी कि हम बहुत खुश रहें तो अशांत मन से कभी कोई खुश हो ही नहीं पाता है। ऐसा मनुष्य वो रास्ते तलाशता रहता है कि दूसरों को हराया कैसे जा सकता है और उसकी बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ इसी में व्यर्थ जाती है कि दूसरे को हराया कैसे जा सकता है और जिससे वो सुख पाले। लेकिन समझने की बात यह है कि किसी इंसान को हराने से बहुत बेहतर है कि उसका दिल जीत लिया जाए और ये सही मानों में असली जीत होती है और इससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्नता बढ़ जाती है। सिर्फ अपनी खुशी देखना, अपने बारे में सोचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये सभी बातें हमें अत्यधिक स्वार्थी बना देती हैं, जिसे हम सबको बचना चाहिए। क्योंकि जो स्वार्थी होते हैं ना तो उन्हें कोई बहुत अधिक पसंद करता है और ना ही उनसे मित्रता बढ़ाना चाहता है, ना ही उन पर भरोसा करता है और स्वार्थी इंसान कभी आंतरिक रूप से प्रसन्न या संतुष्ट भी नहीं होता है। स्वार्थ के कारण ऐसे लोगों के पास सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते नहीं बचते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्तियों को जब ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ अपने भले की सोच रहा होगा तो वो उससे बचने लगते हैं और ऐसे लोग भीतर से बहुत अकेले हो जाते हैं और अकेलेपन में उनके नकारात्मक विचार और भी बढ़ जाते हैं। वो दूसरों की सफलता या खुशी को देखकर चिंतित से होते रहते हैं। वो चिंता

0: जो अपने सुख के लिए, सबकी समृद्धि के लिए की जाए, वो चिंता हमें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती है। लेकिन कहीं दूसरा सफल ना हो जाए, ऐसी चिंता हमारा मन अशांत करती है। इसलिए हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में जो सुकून मिलता है, वो स्वार्थी जीवन में हमें कभी मिल ही नहीं सकता। क्योंकि स्वार्थ करते समय हमें भी पता होता है कि हमने कहीं ना कहीं किसी का अहित कर दिया है। आज हम किसी का अहित करेंगे तो निश्चित है कि हमारा भी अहित होगा ही। इसलिए इस बात का हम स्मरण सदैव रखें कि यदि हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो कोई दूसरा हमारे बारे में भी बुरा सोच रहा होगा। और ऐसा करने से इस जीवन में केवल कड़वाहट ही बढ़ती है, इस जीवन में कभी भी सुख का एहसास नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना भी भला सोचें और दूसरों का भी भला सोचें। सभी के बारे में विचार करना अनिवार्य है। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इजाजत दीजिए साहिबा को कार्यक्रम सुबह सुबह से। अब आप सुनेंगे कृषि संकेत। आज बात होगी कम पानी की रबी फसलों की बोनी की जानकारी की। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी। आइए सुने कृषि संकेत का ये अंक।
1: इस वर्ष अनियमित वर्षा हमारे जिले में हुई है। किसी किसी विकास खंड में 1000 से अधिक मिलीमीटर बारिश हुई है और कुछ विकास खंड हमारे ऐसे हैं जहां पे 500 से 700 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसी परिस्थिति में हमको इस वर्ष रबी मौसम की जो प्लानिंग है, वो वर्षा जल की उपलब्धता, या हम ऐसा कहें कि हमारे कुओं में पानी या हमारे जो सिंचाई के साधन हैं, वहां पे पानी की उपलब्धता के हिसाब से हम रबी फसलों की प्लानिंग करें। जहां पे मिट्टी हमारी हल्की है, जहां पे सिंचाई कम है, वहां पे हम सरसों की बुआई करें, जिससे हम कम पानी में भी ठीक ठीक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरसों के बाद अगर हम बात करें जल्दी बोने के लिए, अगर हमारी मध्यम भूमि है या काली मिट्टी है, वहां पे अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है, तो हम वहां पे मसूर या अलसी की जल्दी बुआई कर सकते हैं। मसूर की तमाम ऐसी किस्में हैं जिनमें उकटा नामक बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, जैसे L4717, L4727, L4729, जवाहर मसूर 3, DPL62, IPL81, IPL316, IPL534, RVL31, RVL11-6, ये सब नई वैरायटी हैं जिनका उत्पादन भी काफी अच्छा है और इनमें कम पानी की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम अगली फसल की बात करें तो उसमें है चना। चना हमारे सागर जिले में काफी बड़े रकबे में होता है और चने में हमको ये ध्यान रखना है, चना और मसूर में खास तौर से, कि जब पर्याप्त नमी हो तभी हम बुआई का काम करें। अगर बुआई करते समय नमी की मात्रा कम है तो आप 2 या 3 घंटे का स्प्रिंकलर चला के खेत में पलेवा करें, जिससे नीचे की नमी में ऊपर का स्प्रिंकलर का योग हो जाए और हमारी जमीन गीली हो जाए। इसके बाद जुताई करें और जुताई करने के बाद लगभग 4 से 5 इंच गहराई पे हम मसूर और चना की बुआई करें। इस गहराई या इससे थोड़ी सी और अधिक 6 इंच तक की गहराई पे भी अगर चना की बुआई करते हैं तो उकटा नामक बीमारी का प्रकोप की संभावना कम रहती है। चना की जो अच्छी किस्में हैं उनमें JG18, JG24, ये थोड़े बोल्ड दाने की हैं, JG52, JG36, JG63, ये छोटे दाने की हैं। इसके अलावा RV जो ग्वालियर की किस्में हैं, RBG202, RBG203, RBG204, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा मानव, पूसा समृद्धि, ये भी नई किस्में हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। चना, मसूर, मटर, जो भी बीज हम बुआएं, उसकी बुआई के पहले हम फफूंदनाशी दवा से उपचार करें और फफूंदनाशी दवा से उपचार करने के बाद राइजोबियम और PSB कल्चर से जरूर उपचार करें, इससे हमारे उर्वरकों की मांग कम होती है। क्योंकि इस बार कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई है, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा कम होगी, इसलिए वहां पे किसान भाई सीमित सिंचाई वाली किस्में, जैसे C306, HI1531, JW3020, JW3211, JW3288, इन किस्मों का उपयोग करें। और जहां पे सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, जहां पे आप 4 या 5 पानी दे सकते हैं, जैसे हमारे मालथोन विकास खंड में, देवरी विकास खंड में, रहली विकास खंड में बारिश 1000 से अधिक मिलीमीटर हुई है, वहां पे हम सिंचित किस्में JW322, JW3382, HI1544, HI1650, DBW303, GW513,

0: का GW451 इन किस्मों का उपयोग करें जो हमारे रोटी क्वालिटी की भी हैं और जिनका उत्पादन भी काफी अच्छा है। तो ये अगर हम इन किस्मों का चयन में ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपको कम पानी में भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: अभी श्रोताओं ने सुना कृषि संकेत का ये अंक, कम पानी की रबी फसलों की बोनी की जानकारी पर आधारित था आज का ये अंक। विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी थे। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी सागर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत, विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की। कानों में जंगली भैंसों को बसाने की पहल तेज, 8 भैंसों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। और भारत ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में जय गोपाल गारोडिया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके नए विचार और समाधान भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, अलग सोचने और बिना डर के अपने सपनों पर, अपने विचारों पर काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विद्यालय के 50 साल के सफर को प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोजपुर के बिनेका में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की। इस दौरान रायसेन जिले में 84 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की 31 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव और हर मजरे टोले तक सड़क पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में इस योजना की शुरुआत के बाद दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजनाएं शुरू हुई हैं। श्री चौहान ने कहा,
1: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चल

0: बहनों को गरीब नहीं रहने देना है। गरीबी से बड़ा दुख और कोई नहीं है। कदम कदम पर तकलीफ झेलनी पड़ती है। और इसलिए मेरी बहनों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्व सहायता समूह, ये मेरी समूह की मेरी बहनों, ये केवल लाडली बहनों तक नहीं रोकेगा। अब अभियान जाना है लखपति दीदी, मतलब दीदियों को लखपति बनाना है, बनाना है और बनाना है।
1: राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में कल राज्यपाल वंगूभाई पटेल की मौजूदगी में नवरात्रि और गरबा महोत्सव मनाया गया। राज्यपाल ने माँ दुर्गा की आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश में करीब 100 साल पहले विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को फिर से बसाने की कोशिश तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कान्हा टाइगर रिजर्व के सुखार क्षेत्र में 8 जंगली भैंसों को 1 हेक्टेयर के छोटे बाड़े से निकालकर 17 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में छोड़ा। ये सभी भैंसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए हैं। अब उन्हें यहाँ के मौसम और वातावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में कान्हा क्षेत्र में कुल 50 जंगली भैंसों को फिर से बसाना है। देवास की कृषि उपज मंडी में कल बलराम कृषि महोत्सव और जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही है। मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने रबी की फसलों की उन्नत किस्मों और कम पानी से ज्यादा उत्पादन लेने के तरीके बताए। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रिप स्प्रिंकलर, सिंचाई और प्राकृतिक खेती की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नरसिंहपुर में शिक्षक अधिकार यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि की। इसके तहत प्रदेश के 20,456 स्कूलों के खातों में 502 करोड़ रुपए भेजे गए। इससे 8,19,000 से अधिक बच्चों की मुफ्त पढ़ाई में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 2011 से अब तक आरटीई के तहत निजी स्कूलों को 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति दी जा चुकी है, जिसे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: देश के साथ प्रदेश में भी सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भोपाल के प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प जरदोजी और भोपाली बटुए को पहचान मिल रही है। आधुनिक दौर में भी भोपाली बटुए, क्लच पर्स और डोरी वाले बटुए की मांग बनी हुई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हमारे भोपाल संवाददाता ताहिर खान।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो भोपाल में भोपाली बटवे काफी प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प कढ़ाई कला जरदोजी को सजाते आ रहे सुनील पारेख ने बताया कि उनकी 11वीं पीढ़ी इस काम को इस समय कर रही है। उनके द्वारा करीब 50 परिवारों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस काम में बड़ी संख्या में पुरुष के साथ महिला कर्मचारी भी अपने हुनर दिखाने का काम करती हैं। सुनील पारेख ने बताया कि
4: हमारे पूर्वजों ने भी 10 पीढ़ियों से इसी काम को संभाला है। हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी ये दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करते रहेंगे। कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो एक अमानत है, भोपाली बटुए जो जरदोजी और मोती के वर्क पे होता है, साधारण साटन के कपड़े पे, मक्खन के कपड़े पे, जूट के कपड़े पर और कई तरह के मजबूत कपड़ों पर काम किया जाता है और लोगों को बहुत पसंद आता है।
3: सुनील पारेख ने बताया कि वो अपने पुत्र कान्हा पारेख के साथ लगातार रियासत कर्मी इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आधुनिकता के दौर में आज भी इस काम की काफी पूछ परख शहर में देखने को मिलती है। आकाशवाणी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
1: सागर जिले की वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने अवैध लकड़ी की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने 52 नग सागौन की लकड़ी जब्त की है। ये कार्रवाई झारखंड क्षेत्र के सुहेला गांव में मुखबिर की सूचना पर की गई। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी के म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राजधानी भोपाल में आज से अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव की शुरुआत होगी। 12 से 18 अक्टूबर तक रविन्द्र भवन में चलने वाले इस उत्सव में हर दिन शाम 7 बजे से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद रात 9 बजे भोपाल का हृदय बहन भजन की जैमी प्रस्तुति देगा। भारत ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। भारत के 223 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 69 रन की शानदार पारी खेली। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे हो गया है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय किला भवन इंदौर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जबलपुर में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के साथ पूरे शहर भक्तिमय माहौल में है। नर्मदापुरम जिले में भी नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। खंडवा शहर के विभिन्न वार्डों और प्रमुख चौराहों पर आकर्षक और कलात्मक मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की गई। झाबुआ में आगामी त्योहारों गरबा महोत्सवों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत विशेष शक्ति स्क्वाड का गठन किया है। अशोकनगर अपर कलेक्टर ने फसल काटने के बाद उसकी पराली जलाने से प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व कपास दिवस के अवसर पर धार जिले के कुक्षी में एक दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कृषि प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय कटनी में नवजात बेटियों का स्वागत कर उनकी माताओं और परिजनों को स्वागत किट भेंट की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत फिल्म क्रांति से है। महेंद्र कपूर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों का स्वर है। संतोष आनंद की ये रचना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा। पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। तालुका शेवगांव मुंगी पैठर महाराष्ट्र से बाबा साहब कंगनकर, साखरबाई कंगनकर, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी कंगनकर। भूर चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह। यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा सोलंकी, शौर्या सोलंकी और मून सोलंकी। आइए सुनिए आप सबके अनुरोध पर ये गीत।

0: वालों, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रोग्राम में अगला गीत है फिल्म मिस्टर नटवर लाल से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज, राजेश रोशन का संगीत और आनंद बख्शी के ये बोल, जिनको सुनना चाहते हैं। नीम बाजार कुंडल वारी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, ये अनुरोध है। अडार नाथ घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा का, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, ये है गीत आपकी पसंद का।

इसी गीत का अनुरोध नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का भी है।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दे नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096977।
2: और अगला गीत जो अब आप सुनेंगे वो फिल्म आज की आवाज से है। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत और आपकी फरमाइश। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरु शब्द सिंह। शास्त्री नगर बीच शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल। माल टेकरी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे और श्रद्धा ढेकरे। सिविल लाइंस रोड रोहतक से श्रद्धा और आशु, ललित, मानसी, ये नाम लिखे आपने। भोलना पार बालोद से देव नारायण साहू, योगिता साहू, गीतिका साहू, चंचल रानी, उमा बाई साहू। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आप सबके अनुरोध पर आइए सुने ये गजल।

0: नाम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज।
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
0: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
3: नीला आकाश ये फिल्म का नाम है जिससे अब आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना जिसको राजा मेहंदी अली खान ने लिखा है, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और हमारे इन श्रोताओं ने अनुरोध हम तक पहुंचाया है गीत सुनवाने के लिए। हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा इंदिरा शर्मा, ग्राम नगर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामन देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया कविता महोबिया विशाल विवेक सोनू मोनू रानू ईशु बाबा, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवीर लक्ष्य मोहिनी ऋतिक बलवीर, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन भाव्या। आइए सुने आपकी पसंद का ये गाना।

0: बात ये है,
1: ये शर्माने की बात नहीं है। अगर आप आइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
0: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन किली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्वागत।
2: प्रोग्राम के आखिर में आइए सुने फिल्म वापस से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर, मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और अनुरोध आपका। ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक। मुंडा टोला डाडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल, कामेश और माहिर नेताम। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। मारहरा दरवाजा एटा से नबन नबी हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, नवेद हसन, शहनवाज अब्बासी, अनम अब्बासी, मुबीन और यशफ अब्बासी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे। आइए सुने आपकी पसंद पर ये गीत।

अभी श्रोता मनचाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। समय हुआ है संगीत सरिता का। सबसे पहले सुनते हैं ये गजल दिलराज कौर की आवाज में। ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096077
0: 8720099677।
2: और आइए अब सुनिए चंदन दास को।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। ये है अनूप जलोटा।

अभी श्रोता संगीत सरिता कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हूती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को

0: इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
2: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत तो बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से कॉप कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
2: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विल्स स्ट्रिटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है

0: 8002471234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सदानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। नई दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123104 8 01123107117। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मेरे www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोक सत्य की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता

0: दो पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 8:15 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं लोक संगीत में। सबसे पहले सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये देवी गीत।
3: गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096777।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और अब सुनते हैं देवकी नंदन सकवार को।

लाल की लाल

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दे नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096977।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: और आइए अब सुनते हैं रेखा गुप्ता और अंजना गुप्ता।

अभी श्रोता लोक संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बिंदिया।

सखियों नमस्कार। बिंदिया कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी हंसती मुस्कुराती हुई सखियों का स्वागत है हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम बिंदिया में। दिन भर का सबसे व्यस्ततम समय है सखियों ये, और सारे काम इसी वक्त हम लोगों को करने होते हैं। और अभी तो नवरात्रि चल रही है तो थोड़ी सी व्यस्तता और ज़्यादा है, क्योंकि सुबह से पूजा पाठ, मंदिर जाना और व्रत भी हमारी बहुत सारी सखियों ने रखा हुआ है। तो घर के बाकी सदस्यों के खाने की व्यवस्था के साथ अपने फलाहार की व्यवस्था करनी होती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाता है। और फिर मंदिरों में, दुर्गा पांडालों में कार्यक्रम भी चल रहे हैं, साथ ही गरबा कार्यक्रम भी हो रहे हैं। सखियों, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ चल रही होती हैं तो कई बार अपने स्वास्थ्य को हम नज़रअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि त्योहारों का उत्साह जो है वो एकदम चरम पर होता है। लेकिन ऐसे में लापरवाह होने की नहीं बल्कि थोड़ा सा और सतर्क होने की ज़रूरत होती है सखियों, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना। और हमेशा ही कहते हैं हम कि जब हम स्वस्थ खुद रहेंगे तभी बाकी सदस्यों का और अपने घर का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए पर्याप्त पानी पीती रहें, बहुत देर तक भूखी ना रहें, फ्रूट्स हैं, दूध है, ताज़े दही की छाछ है, ये सब लेती रहें, बनाकर पीती रहें। और फलाहार जैसे ठोस पदार्थ जो भी आप लेना चाहें लेती रहें, जिससे ऊर्जा में कोई कमी ना आने पाए। और एक बात ये सखियों कि हमारी बेटियाँ बालिकाएँ इस दौरान डांडिया खेलने भी जाती हैं, तो उस समय अपने परिधान थोड़े से आरामदायक ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि प्रॉपर फिटिंग नहीं है, लहंगा ज़्यादा लंबा है, ब्लाउज ढीला है, टाइट है, तो बार बार ध्यान वहीं जाता है। ऐसी चीज़ें होने से परेशानी भी हो जाती है और हम पूरी तरह से उत्सव में शरीक नहीं हो पाते हैं। साथ ही सखियों, एक बात देखने में आती है कि त्योहारों के चलते खासतौर पर नवरात्रि में लगभग सभी सखियां, छोटी बड़ी सखियां हमारी मंदिर जाकर पूजा आरती करती हैं, अगरबत्ती लगाती हैं। तो क्या होता है कि जिन जगहों पर अगरबत्ती लगाने के लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई है वहां तो कोई ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन कई जगह जिसको जहां समझ में आया वहीं अगरबत्ती लगा दी, वहीं दिया लगा दिया। अब क्या है कि बच्चे थोड़े से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, चंचल भी होते हैं, उन्हें हर चीज़ छूकर उठाकर देखने की जिज्ञासा होती है। एक बार हमारे सामने की ही बात है सखियों कि एक बहन ने अगरबत्ती जलाकर वहीं पास में रखे हुए एक गमले में लगा दी। अब उसमें से धुआं तो निकलता ही है अगरबत्ती में से। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और धुआं को छूने की कोशिश में उसने जलती हुई अगरबत्ती पर हाथ रख दिया। वो छोटे से बच्चे की उंगलियाँ जल गईं सखियों। तो ये बहुत छोटी सी बात है सखियो, थोड़ी देर वो रोया बच्चा, बहलाया उसको, एलोवेरा लगाया, फिर भी खेलने लगा। लेकिन ऐसी चीज़ें बार बार देखने में आती हैं, कोई सखी की साड़ी में आग पकड़ गई ये भी सुनने में आता है। कभी कभी बहुत सारे जनसमुदाय इकट्ठा होकर आरती का आयोजन भी करते हैं, तो ऐसे में भी कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। सखियों, यही कहना है हमारा कि इस उत्सव के माहौल में, उत्साह में आकर अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा मत कीजिए, बल्कि थोड़ी सी और सतर्क रहकर

खुशियों को दोगुना कर लीजिए, क्योंकि नवरात्रि और दशहरा दोनों ऐसे उत्सव हैं जब सभी लोग आनंद में मग्न होते हैं। आतिशबाजी, रावण दहन, ये सब बहुत ही खास हिस्सा होते हैं। मेले लगे हुए होते हैं, वहां पर ऐसे खिलौने भी मिल रहे होते हैं जो जरा सी लापरवाही होने पर घातक भी हो सकते हैं सखियों। और फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको उतनी समझ तो होती नहीं और जिद पकड़ लेते हैं, तो अपने को ही थोड़ी समझदारी दिखानी होती है कि उनको हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे बहला सकते हैं, है ना। चलिए, नवरात्रि की और आने वाले दशहरा के त्योहार की हमारी सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को ढेरों ढेर बधाई और सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ये गीत।

पवित्र होते ही सखियों हमारा सिर अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है, एक अलग श्रद्धा से भर जाता है, एक अलग सम्मान से भर जाता है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारत में रामेश्वरम में हुआ था। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उन्होंने और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ मिसाइल बनाने के क्षेत्र में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। और ये बात किसी से छिपी नहीं है सखियों कि कलाम साहब ने अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए काम किया, क्योंकि उन्होंने हमें बताया, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताया कि सपने वे नहीं होते जो वक्त सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देने की प्रेरणा हमें उनसे मिली। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया सखियों कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है, जी जान लगा देना है, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। बड़े सपने देखने की प्रेरणा वे हमें हमेशा देते रहे, है ना। और बच्चों के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हुए कभी कोई असफलता देखने को मिलती है, उतनी ग्रोथ हम नहीं कर पाते जितनी हम उम्मीद कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से हताश होने के बजाय हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और उस बात पर चिंतन मनन करना चाहिए कि हमने कहाँ कमी कर दी या ऐसा क्या हुआ जो हमें करना चाहिए था और हम नहीं कर पाए। साथ ही हमें ये भी सिखा गए वे कि हमारी स्वयं की तरक्की के साथ हमारे देश का विकास भी उतना ही ज़रूरी है या कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हमें पूरी तरह से जिम्मेदारी निभानी होगी, ईमानदारी और लगन से अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी हम देश के विकास में अपनी सहभागिता कर सकते हैं सखियों। और सबसे बड़ी बात जो वे हमें सिखा गए वो ये कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, हमें कितनी भी उपलब्धियां, कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल क्यों ना हो जाएं, जीवन में विनम्र होना या विनम्र बने रहना बहुत बड़ा गुण है सखियों, जो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ों का सम्मान, प्रेम, स्नेह, सहजता, ये सब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहे सखियों। और भी बहुत सी बातें हैं, और फिर कलाम साहब के बारे में तो जितना कहा जाए सखियों उतना कम है। तो इस सप्ताह 15 तारीख को उनकी जयंती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आगे आने वाले जीवन में ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का वादा करते हैं। और अब बात आती है सखियों आज की ज्योति पुंज की। जब भी हम ज्योति पुंज में किसी महिला व्यक्तित्व की बात करते हैं सखियों, तो ये बात हमारे जहन में आती है कि यदि दृढ़ संकल्प कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर समाज में रूढ़िवादी सोच में बदलाव लाया जा सकता है। बस थोड़े से साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है सखियों, और यही कर दिखाया मराठा महिला शासक महारानी ताराबाई भोसले ने। सखियों ताराबाई भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी और राजा राम महाराज उनके पति का नाम था। 1700 ईस्वी में जब राजा राम महाराज का निधन हुआ तब उनका पुत्र नाबालिग था। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उन्हें, लेकिन पूरे साहस के साथ उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने बेटे की ओर से शासन का कार्यभार संभाला, और इतना ही नहीं मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और शासन की बागडोर संभाले रखी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है सखियों कि महारानी ताराबाई के जीवन से हमें ये सीखना होगा कि हालात चाहे कैसे भी हों या कितने भी कठिन क्यों ना हों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। उन्होंने ये साबित कर दिया सखियों की पूरी निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी को यदि समझा जाए, निभाया जाए, तो साम्राज्य संभालने जैसी बड़ी भूमिका भी निभाई जा सकती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। सखियों आज ज्योति पुंज क्रम के माध्यम से हम रानी ताराबाई भोसले के साहस को प्रणाम करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता को सलाम करते हैं। और सखियों अब फिर वही बात कि त्योहारों का समय लगातार चल रहा है, उनकी तैयारियां भी खूब जोर शोर से चल रही हैं, और बात यदि करवा चौथ के त्योहार की हो तो क्या कहने, हमारी सखियों का उत्साह एकदम चरम पर होता है, और हो भी क्यों ना भाई, पूरे साल इस दिन का इंतजार करती है हमारी सखियां। हाँ, ये जरूर है कि तैयारियां जरूर करनी होती हैं, लेकिन हर एक सखी के चेहरे की चमक इस दिन देखते ही बनती है ना। और फिर सजना संवरना किसे अच्छा नहीं लगता, हर सखी चाहती है कि करवा चौथ वाले दिन वो खूबसूरत दिखे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप व्रत की या पूजा की तैयारी पहले से पूरी योजना के साथ कर लेंगी।

तो आखिरी समय में तनाव और भागम भाग से बच जाएंगी। होता क्या है सखियों, हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं मार्केट जाकर सारी चीजें समय पर लेके आने की, लेकिन कभी निकलना नहीं हो पाता, कभी हम स्वयं ही आलस कर जाते हैं, कभी मौसम का उतार चढ़ाव कारण बनता है। अभी भी देख लीजिए, इतनी तेज धूप और गर्मी हो रही है कि जब तक धूप ढल ना जाए बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसलिए शाम के वक्त जब ठंडा हो जाता है मौसम 4-5 बजे, तब आप घर से निकल सकती हैं, क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। थोड़ी सी ये बात भी है ना कि साड़ी या सूट या लहंगा, जो भी परिधान आप पहन रही हैं, उसका चुनाव हम एक बार फिर से अच्छे से देख के कर सकते हैं, है ना। ये जरूरी तो नहीं है कि हमें एक ही बार में सारी चीजें मिल जाएं, क्योंकि हम अपने मन मुताबिक डिजाइन, प्रिंट, रंग, ये सब मिलने में कभी कभी वक्त भी लग जाता है। एक से ज्यादा दुकानों पर भी हमें देखना पड़ सकता है, और यदि एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा बाजार भी जाना पड़ जाता है। तो और दूसरी बात क्या है कि त्योहारों के चलते टेलर के पास भी बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है, बहुत काम होता है। तो ऐसे में यदि आपके परिधान को चुनाव हो गया है तो ब्लाउज है, सूट है, साड़ी की पीको फॉल है, ये आप अभी से तैयार करा सकती हैं, क्योंकि कई बार फिटिंग के इश्यूज आ जाते हैं सखियों, या वैसा सिला नहीं जाता जैसा हम चाह रहे होते हैं, तो समय रहते उसको ठीक कराया जा सकता है। और चूड़ियों का सेट हो गया, मैचिंग ज्वेलरी हो गई, या जो भी आप पहनना चाह रही हैं उसकी खरीदारी पहले से ही कर सकती हैं, या नहीं भी कर रही हैं तो सब एक जगह व्यवस्थित करके रख सकती हैं, है ना, क्योंकि उस दिन पूजा की तैयारी में भी समय लगता है, सारी चीजें सलीके से करनी होती हैं। और ऐसे में यदि हमारी स्वयं की तैयारी ठीक से नहीं होगी तो थोड़ा तनाव तो हो ही जाता है, और अगर आप लास्ट मोमेंट में होने वाले तनाव से बचना चाहती हैं तो पूरी तैयारी पहले से और व्यवस्थित तरीके से करके रखें, तभी आप व्रत का पूरा आनंद ले सकेंगी। आइए सखियों, सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

चलिए सखियों, ये बहुत ही प्यारा सा माता जी का भजन हमने अभी सुना। साथ ही यहाँ पर सखियों हम ये भी कहना चाहेंगे कि करवा चौथ की पूजा करने के बाद आजकल सार्वजनिक स्थानों पर भी त्यौहार मनाने का रिवाज है, और कॉलोनी में तो क्या होता है कि जब सब लोग इकट्ठा होकर पूजा आरती करते हैं, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, हंस बोल कर, गा बजा कर, है ना, और खुशी को अपनी दोगुना कर लेते हैं। तो सखियो, ऐसे में आरामदायक परिधान तो मायने रखता ही है, साथ ही फुटवियर भी उतना ही मायने रखता है। इसलिए जूते चप्पल का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि केवल डिज़ाइन और रंग अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आराम और पैरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होता है। कई बार अपनी सखियों को कहते हुए हम सुनते भी हैं कि आज थोड़ी सी

हाई हील वाली चप्पल क्या पहन ली, पैरों में दर्द हो गया। क्योंकि सखियो ये सिर्फ ध्यान ना रखने की वजह से होता है, कलर अच्छा लगा या डिजाइन पसंद आया और हम खरीद कर उपयोग करने लगते हैं। इस बात पर हमारा ध्यान ही नहीं गया कि उनका सोल आरामदायक है या नहीं, नीचे की तली पर पर्याप्त ग्रिप बनेगा या नहीं। इन बातों पर हम कई बार नजरअंदाज इन चीजों को कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा क्या है कि सिर्फ त्योहारों पर या फैंसी ड्रेसेस के साथ ही नहीं, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले जूते चप्पल खरीदते समय भी इस बात को ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए कि हल्के हों, यानी लाइट वेटेड हों, जिससे कहीं लंबा चलकर भी जाना पड़े या दिन भर पहन के रखना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत हार्ड सोल या भारी तले वाले जूते चप्पल भी लगातार पहनने से समस्याएं होने लगती हैं और अब परेशानी हो जाती है ना, दिक्कत पैदा हो जाती है, तब हम सतर्क होते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान पहले से ही रख लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। सखियो, मौका है नवरात्रि का, श्रद्धा और विश्वास के पर्व का, तो सुन लेते हैं माता रानी का एक और खूबसूरत सा गीत।

चलिए सखियो, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी सी सतर्क रहेंगी, थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगी तो त्योहार यादगार बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप सुनती रहिए आकाशवाणी सागर। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बिंदिया। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और अंतराल में जाने से पहले बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजों में। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा, टूबी प्रतीक शैल प्रतीश और संजीव सेन का संगीत था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: रंजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जावेद अली, कीर्ति सगाथे और साथियों की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चतुर्लोक और हम बात कर रहे हैं रंगों की। तो वैसे तो रंगों को लेकर कई तरह की बातें पढ़ने सुनने मिलती हैं, लेकिन क्या वाकई किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व रंगों के प्रभाव से बदल सकता है? भाई, हमें लगता है कि इसमें रंगों का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम किसी रंग को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि कई बार उन रंगों से जुड़ी यादें, भावनाएं या वो बातें जो हमारे अवचेतन में बसी होती हैं, वो भी उन रंगों को लेकर हमारे नजरिए को प्रभावित करती है। वैसे ही जैसे कि किसी को लाल रंग पसंद होता है, किसी को नीला, किसी को हरा तो किसी को पीला, और उसके लिए वही रंग खुशी का प्रतीक बन जाता है। तो जैसे हम रंगों में ढल जाते हैं, रंग हम में ढल जाते हैं, बस उसी तरह से हम भी अलग अलग रंगों में ढल जाएं, बजाय ये सोचने के कि कौन सा रंग हमें पसंद है। और कभी कभी अलग अलग रंगों में ढलने का भी अपना एक अलग मजा होता है।

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया।

0: स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में एजेंट विनोद, फिल्म का गीत आपने सुना अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

लुटेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जब वी मेट फिल्म से ये गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी ये किसी सीन के रहस्य चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गडेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह
2: की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शायर और गीतकार निदा फाजली। कहते हैं निदा के चाहने वालों से निदा भले ही दूर चले गए हैं, लेकिन उनके ख्यालात, उनकी गजलें, उनके गीत हर वक्त उनके आसपास होने का एहसास दिलाते रहते हैं और एहसास दिलाते रहेंगे। निदा फाजली, इनका पूरा नाम था मुक्तदा हसन निदा, लेकिन इनकी शायरी और इनके गीतों ने इनको मशहूर किया निदा फाजली के नाम से।

हिंदी से जुड़े शायर और गीतकार निदा फाजली की पैदाइश दिल्ली की है। पिता मुर्तुजा हसन और मां जमील फातिमा की तीसरी संतान मुक्तदा हसन यानी निदा फाजली की जन्म तारीख दिल्ली के कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में लिखवाई गई 12 अक्टूबर 1938। हालांकि बचपन इनका बीता ग्वालियर में और ग्वालियर के कॉलेज से इन्होंने पोस्ट

हमीदा फाजली को लिखने का शौक तो पहले से ही था, इसलिए इन्होंने अपना पेन नेम यानी तखल्लुस काफी पहले ही रख लिया था, फाजली। फाजिला ये कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहां से निदा के पुरखे माइग्रेट होकर दिल्ली में बस गए, इसीलिए निदा ने अपना तखल्लुस रख लिया फाजिली।

0: हमीदा फाजली शुरू से ही कबीर और सूरदास से प्रभावित रहे। गालिब की सहजता उन्हें बहुत मुतासिर करती थी और शायद इसीलिए उनकी खुद की शैली भी बहुत ही सरल और सहज भाषा वाली हो गई।
1: हाँ,

जैसा कि हमने पहले ही बताया कि निदा फाजली कबीर और सूरदास से प्रभावित थे, तो उन्होंने भी कुछ दोहे लिखे हैं, कुछ आपको सुनाते हैं। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। घर को खोजे रात दिन, घर से निकले पांव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गांव। मैं भी तू भी चलती रुकती रेल, अपने अपने गांव तक

सबका सबसे मेल, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो करे मुझे करे बदनाम। और ये एक पांचवा और अंतिम दोहा आपको सुनाता हूं, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सचमान।

0: पार्टीशन के बाद देश में होने वाले दंगों से निदा फाजली के माता पिता परेशान और दुखी हो गए और तब उन दोनों ने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला कर लिया। लेकिन
1: ये आकाशवाणी सागर है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।

0: से तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है मनोपचार सुखी संसार कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और हमेशा की तरह मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। सर नमस्ते।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: सर आज से नवरात्र महोत्सव शुरू हो रहा है, घर घर में पूजा है, उपवास व्रत हो रहे हैं और रोशनी है चारों तरफ, उत्साह है चारों तरफ, उमंग है चारों तरफ। इस पूरे परिदृश्य में अगर हम देखें तो ये बात सच है कि लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा अति उत्साह देखने को मिलता है और यह अति उत्साह, कई लोग उस अति उत्साह को मनोरोग से जोड़ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जब नवरात्र जो हो, चैत्र के नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, तो ये मौसम में बदलाव के समय आते हैं। तो मौसम में बदलाव होता है तो हमारे ब्रेन में भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर या बाकी चीजों में चेंजेस आता है, तो हमारे न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो ये जो अति उत्साह या उन्माद जो है, तो

0: इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती
1: जी
0: कि व्यक्ति मेनिया में जा सकता है उन्माद की बीमारी की, उसे लगता है कि वो शक्ति उसके अंदर ही है, या फिर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझना, या बड़ी पदवी वाला समझना, बड़ा ताकतवर समझना, अति उत्तेजना, अति चिंता, अति उत्साह, या फिर अपने आप को ही सब कुछ समझना और दूसरे को कुछ ना समझना, बहुत जरूरत से ज्यादा बातें करना, जरूरत से ज्यादा एनर्जी दिखाना, बिना सोए भी बहुत एनर्जेटिक फील करना, ये मैनिया के लक्षण है जो आ सकते हैं मौसम में बदलाव के साथ, या फिर कई लोग जो अकेले हैं या इस उत्साह में शामिल नहीं हो पा रहे, या फिर जिनकी सुनी नहीं जा रही कि वो अंदर से थोड़े से चिंतावान व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं बातें, उनके अंदर भी बहुत सारी कुलबुलाहट दिमाग में चलती रहती है लेकिन वो उसको निकाल नहीं पाते, वो अंदर
2: घर कर गया
0: तो वो कभी कभी फूटता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि व्यक्ति में शक्ति आ गई और वो तरह तरह के कृत्य करता है, अपने आप को जो है वो ना समझ के कुछ और समझने लगता है, और कुछ वो कुछ घंटों या मिनटों में
2: शांत भी हो जाता है
0: कि हम लोग समझते हैं कि ये कुछ रिचुअल है या वो, तो वो अलग तरह की बीमारी। तो ये दोनों तरह की बीमारियां ज्यादा देखने को।
2: अब जैसे देखते हैं ना, जैसे हमने कहा अति उत्साह, बहुत अच्छा संगीत सुनाई जब देता है किसी को तो वह नाचने लगेगा, नाच रहा है, बहुत देर तक नाचेगा, उसे किसी से कोई परवाह नहीं है, कहाँ खड़ा है, किस अवस्था में है, नाच रहा है। चीखने लगते हैं कई लोग, बहुत जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हाथ खींचना, हाथ पटकना, पैर पटकना, ये सब भी करना शुरू हो जाता है। इसको आप क्या मानेंगे, क्या है ये मनोरोग?
0: यदि ये आप मान लीजिए देवी जी का प्रोसेशन निकल रहा है, उस समय बस आधा घंटा एक घंटा कर रहे हैं, उस समय भजन चल रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल है,
2: ठीक जी।
0: लेकिन आप उसको सतत प्रतिदिन कर रहे हैं,
2: अच्छा,
0: बिना म्यूजिक के, या फिर आप म्यूजिक 24 घंटे लाउड म्यूजिक चला के गाने ही गा रहे हैं और बहुत ज्यादा ही बातचीत कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, थक भी नहीं रहे,
2: अच्छा
0: और लगे हुए उसी में, एक जरूरत से ज्यादा, एक समझ में आता है ना कि नॉर्मल, उससे अति हो रहा है, सब काम छोड़ दिए हैं, सोना छोड़ दिए हैं, बस एक ही धुन लगी हुई, तो वो बीमारी की श्रेणी में आता है, उन्माद की बीमारी हो सकती है।
2: सर, अब जैसे कि हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं कि इस अवस्था में, इन परिस्थितियों में हमें ऐसे मनोरोगी भी दिखने लगते हैं कि ये मनोरोग से पीड़ित हैं जो उजागर होने जा रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनका इलाज किस तरह से किया जाए, या किसी व्यक्ति का पहले से इलाज हुआ है और वह ठीक हो चुका था फिर उसमें वो सारी चीजें दिखने लगी हैं, तो उसको क्या किया जाए?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे व्यक्ति क्या है, ये मौसम के साथ इनकी बीमारी अप डाउन होती है
2: जी।
0: ये एपिसोडिक मतलब बार बार आने जाने वाली बीमारी ही होती है, मैनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर आप हिस्टीरिया जो पहले बोलते थे, या आजकल कन्वर्जन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो मैंने दूसरी कैटेगरी बताई, तो इसमें क्या है, इलाज सालों भी चल सकता है। कई लोग क्या करते हैं कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है तो बंद कर देते हैं, फिर जब मौसम में बदलाव आता है तो वो लक्षण वापस आ सकते हैं, और कई बार होता है कि हम दवाइयां कम से कम पे रखते हैं, तो मौसम जब बदलाव आता है तो ऐसे में मौसम के बदलाव के समय तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देखो आप देख लीजिए सर कुछ बदलाव हमें लग रहा है, तो वो सही समय पे यदि ले आते हैं तो उत्तेजना में जाने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर पाते, अदरवाइज ऐसे मरीजों को कंट्रोल करना फिर दिक्कत होती है, फिर इंजेक्टेबल्स या एडमिशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो सकता है ऐसा व्यक्ति, खुद को या दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, भाई उसको तो लग रहा है कि वो तो बहुत पावरफुल हो गया है, तो वो अपनी पावर कहीं भी दिखा सकता है, या फिर उसको लग रहा है कि वो नहीं है जो व्यक्ति वो था, या साइकोटिक हो गया कि मैं कुछ और ही हूँ, और वो अपना दुश्मन भी बन सकता है, उसको आवाजें सुनाई दे सकती हैं कि ऐसा करो तो ये तुम्हारा दुश्मन है, तो कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, ऐसे में दवाइयां सेट करानी पड़ती हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहती है पेशेंट से और फैमिली मेंबर से कि देखिए, क्रोनिक डिसऑर्डर जितने जो लंबी बीमारियां हैं, ओसीडी है, बाइपोलर है, या क्रोनिक स्ट्रेस का डिसऑर्डर है, या फिर आप रिकरेंट डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इन सब बीमारियों में दवाइयां समय के साथ अप डाउन करनी पड़ती है, इसलिए रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी होते हैं, और मौसम के बदलाव के साथ हम खुद ही मरीज को बहुत जल्दी समझ के दवाइयां एडजस्ट कर देते हैं ताकि वो इस स्थिति में आए ही ना।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9406922

0: 5768।
1: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी बरेली उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है। संपर्क नंबर 9406925768।
2: सर एक और चीज है कि बहुत साउंड के साथ गाने चलाए जाते हैं, लेकिन जो बहुत स्वस्थ लोग हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा परेशान हैं या बीमार हैं, उन लोगों के लिए ये साउंड कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत चुभता है, परेशान करता है
3: जी।
2: और कई लोग बतलाते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं किसी को, और जब ये परेशानियां बढ़ती हैं तो ये और आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उन्हें क्या सावधानी इस समय रखना चाहिए?
3: ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है अपन ने। एक हिस्सा तो बात कर ली
2: जी,
3: ये है दूसरा हिस्सा कि जो लोग थोड़े से चिंतित ज्यादा रहते हैं या नेगेटिव थिंकिंग जिनमें जल्दी आ जाती है या अवसाद की हिस्ट्री रही है जिनमें डिप्रेशन पहले हो रखा है, तो जब ठंड शुरू होने लगती है तो और इन सब चीजों से उन्हें अच्छा रास नहीं आता तो उनके डिप्रेशन में जाने की रिस्क ज्यादा होती है कि वो फिर हर चीज को चिड़ की वजह से इरिटेशन की वजह से और नेगेटिव और फिर अपने आप को अलग करते जाते हैं, दूर होते जाते, कई लोग शामिल नहीं होते इन चीजों से, दूर हटते रहते हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है उनको। तो ये भी बीमारियां बढ़ती हैं क्योंकि ठंड आने वाली है तो एंजाइटी डिप्रेशन या फिर चिड़ हो रही है उससे, बेचैन हो रही है यार बाहर मैं रोड पे जाऊंगा, अल्लाह मचा रखा है कुछ हो ना जाए मुझे, पैनिक ना हो जाऊं मैं या अटैक ना आ जाए मुझे ये साउंड्स। तो न्यूज आते हैं ना कि भाई डीजे की साउंड की वजह से डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया, वाइब्रेशन इतने ज्यादा थे। बहुत लोग क्या है कि लिमिट के बाहर भी साउंड चलाते हैं तो उससे फिजिकल नुकसान होते हैं तो मानसिक नुकसान भी होते हैं, माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है, हेडेक जो है पल्सेटाइल फील बढ़ जाता है, तो उस तरह की बीमारियां भी बढ़ जाती है। कुछ फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है तो फिर अपन त्योहार को अच्छे से मना भी सकते हैं और जो रोगी हैं या संभावित रोगी हैं उनको भी कंट्रोल में रखा जा सकता है।
2: अब जैसे ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति है बहुत तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, लेकिन आप उत्सव को तो नहीं रोक सकते हैं, है ना? उत्सव तो बाकायदा रहेगा, जहाँ है वो होगा, लेकिन आप अगर रोगी हैं, आप अगर एकांत और शांत वातावरण चाहते हैं तो फिर ऐसे में उनके लिए क्या बताएंगे आप?
3: देखिए यदि उन्हें पहले से प्रॉब्लम है तो वो अपनी दवाइयाँ चेक कराएं, दवाइयाँ वापस एडजस्ट कराएं और कुछ टेक्निक सिखाई जाती हैं कि कैसे रिलैक्स रहना है, कैसे इन चीजों से डील करना है, तो वो काउंसलिंग और कुछ दवाइयों से वो व्यक्ति भी नॉर्मल और एंजॉयबल कंडीशन में लाया जा सकता है। जैसे कि हम मैनिया वाले को उत्तेजना से नॉर्मलसी पे ला सकते हैं तो डिप्रेशन वाले को भी नॉर्मलसी
2: ला सकते
3: हैं, ये पैनिक अटैक वाले एंजाइटी वाले को भी हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो मेडिसिन और काउंसलिंग से बहुत कुछ पॉसिबल।
2: श्रोताओं यही तो जीवन जीने की कला है, हमें हर परिस्थिति में, हर मुश्किलातों में, हर ऐसी स्थिति में जहां हमें अच्छा नहीं लग रहा है पर हम अपने आप को सहज रख सके, इसी को ही जीवन जीने की कला कहते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी बातों की जानकारी आप तक भेजते रहें। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी भोपाल के सुविख्यात मनोरोग, सेक्स संबंधित रोग एवं नशा मुक्ति रोग से संबंधित डॉक्टर हैं और आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9406925768, 9406925768। हम अब आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहे हैं, अगले सोमवार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। आइए प्रतीक्षा करते हैं जिले की चिट्ठी की।

धार जिले में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही भक्ति और उत्साह का माहौल है। मंदिरों को सजाया गया है, जगह जगह गरबा पंडाल तैयार हैं। धार के प्रसिद्ध मां गढ़ कालिका मंदिर में नवरात्रि मेले की शुरुआत हो गई है। त्योहार के चलते बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। त्योहारों के इस माहौल के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में 70% से ज्यादा खरीफ फसलों की कटाई हो चुकी है। इस साल सोयाबीन और कपास की पैदावार अच्छी बताई जा रही है और मंडियों में इनकी आवक भी बढ़ी है। हालांकि कम बारिश के कारण अब रबी की फसलों की बोनी को लेकर चिंता है। जिले में इस साल अब तक करीब 493 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पिछले साल इसी समय तक 863 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका था। पानी की कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने गेहूं का रकबा घटाकर 2,90,000 हेक्टेयर रखा है, जबकि चने की बोनी का लक्ष्य बढ़ाया गया है। किसानों को सरसों, अलसी और चिया सीड जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलें लगाने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में पौधरोपण और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम भी चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक मीना वर्मा ने धार के देवी सागर तालाब परिसर में सफाई और पौधरोपण किया। लोगों को स्वच्छता अपनाने, नशे से दूर रहने और लगाए गए पौधों की देखभाल करने का भी संकल्प दिलाया गया। सेवा सेतु अभियान के जरिए सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तिरला में आयोजित शिविर में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया और स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। जिले के सभी 13 विकास खंडों में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर है। धार में नशा मुक्ति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मद्य निषेध सप्ताह के समापन पर पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दी गई और विद्यार्थियों सहित दिव्यांगजनों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। वहीं पिपलखेड़ा के अनाथ आश्रम के 61 बच्चों को टी शर्ट, स्टेशनरी और खेल सामग्री बांटी गई। अब बात जिले के विकास की। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विकास सलाहकार समिति की बैठक में आगामी रबी सीजन और गर्मियों में पानी की संभावित कमी से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं और नलजल योजनाओं की समीक्षा की गई। इसी कड़ी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हीरापुर से मांडव पहाड़ी तक प्रस्तावित मार्ग और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क और सीढ़ियां बनाने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। इससे धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। जिले में लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर 18 से 19 साल के युवाओं और पात्र नागरिकों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनके नाम अब तक सूची में दर्ज नहीं है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अभियान का प्रचार करने और नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करने की अपील की है। वहीं अब बात धार के विद्यार्थियों की तकनीकी प्रतिभा की। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय टेक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपने बनाए मॉडल और नए प्रयोग पेश किए। विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ 51,000, 35,000 और 21,000 रूपए तक के पुरस्कार दिए गए। और अंत में बात उन बदलाव की कहानियों की, जहाँ सरकारी योजनाओं और मेहनत ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। धार के कुक्षी की सरजू बघेल मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़ी और आज आटा चक्की, ईंट भट्टे और बकरी पालन से करीब 20,000 रूपए महीना कमा रही है। वहीं बाग विकास खंड की सरमी दीदी ने आजीविका मिशन के प्रशिक्षण और सहयोग से बाग प्रिंट को व्यवसाय बनाया है। अब पति के साथ हर महीने 24 से 25,000 रूपए कमा रही है। अमरवन के दद्दू ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान लेकर मछली पालन शुरू किया और करीब 2.5 लाख रूपए का शुद्ध लाभ कमाया। इसी तरह धर्मपुरी के अशोक गेंदालाल ने इसी योजना के सहयोग से मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया और वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 7.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इन कहानियों में सरकारी योजनाओं से मिली प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 4 बजे आप हमें फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुनने की रिकॉर्डिंग में, हमारा नंबर 240-845 और सागर का एसटीडी कोड 075-82। इस वक्त सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फोन करें लोकगीत।

0: तो भैया हरो आपको मनपसंद कार्यक्रम फोन करे लोगी सुने लेके एक बार फिर से हमारे आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। आज एक कार्यक्रम में हम हैं आपके संगे सतीश साहू
1: और हम हैं भैया जय शेखर। तो स्वीकार करो भैया हम दोनों की
0: राम राम।
1: और लेते हैं सतीश भैया जो पहला फोन।
0: बिल्कुल।
1: हेलो।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत है आपको। अपनो नाम बताओ।
2: सीताराम रजक, ग्राम मरकंडी, जिला रायसेन, तहसील बेगमगंज, मध्य प्रदेश।
1: सीताराम भैया
2: जी। सर
1: क्या कर रहे हो आप मरकंडी में?
2: सर कुछ नहीं, अभी तो बखानी चल रही थी खेत की। बतरपा लगाओ, पानी खुलगाओ। सो
1: अच्छा अच्छा भैया, पानी खुलगा भैया। अब तो उमस भी बढ़ है, थोड़ी सी गर्मी भी रहे।
2: गर्मी तो बहुत है सर।
1: हाँ तो भैया ऐसे में खेतों में काम करवो भी बहुत ही मुश्किल हो जाऊ थे।
2: सर एक दो चीजें करा थे उपयोग में। एक तो साथ में पानी रखा था और तौलिया बांध रहे थे मूल से।
1: सही
2: तो काम
1: भैया।
2: करत रहे सर।
1: भैया खान पान में क्या करते हो ऐसे मौसम में?
2: ऐसे मौसम में सर ठंडी गर्म चीजें थोड़ा परहेज रखना पड़ा था। गर्म पानी करके पी लो, अपन उबाल कर रख लो।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: गुणस्कार नहीं करा।
1: अच्छा अच्छा
2: जी,
1: चलो अच्छी बात है भैया। और अब हम भैया आपसे पूछ रहे एक अटका।
2: जी सर।
1: अटका क्या रहा भैया? एक चिड़ैया मोती सी,
2: एक चिड़ैया
1: मोती सी बैठी बनके डार, दोनों सूरज उगे उगे चिड़ैया की आकाश।
2: संकेत मिल गया सर?
1: संकेत भैया यही मौसम की बातचीत कर रहे हैं।
2: बखर तो नहीं है सर?
1: नहीं भैया बखर
2: नहीं।
1: नहीं आ रहा। तो भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे आपको?
2: राजू पटेल, धनीराम सेन को कोई सा भी लोकगीत सुनवा दीजिए।
1: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, राजू पटेल और धनीराम सेन को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें लोगी सुन।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार नमस्कार भैया,
1: हम चरण अहरवार बोल रहे हैं जमुनिया गौड़ से।
0: जमुनिया गौड़ से चरण अहरवार। चरण अहरवार जी, एक पहले कभी लगो तो आपको फोन?
1: हमारा फोन लगो तो सर 2017 में लगो तो सर।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: भैया ते तो महीना जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो साल जोड़ कर बता दें।
1: अरे सर, वो का है ना, यूट्यूब पे आपको प्रोग्राम मिलेगा सुन भैया।
0: अच्छा,
1: तो हमने नंबर निकाल ला सुन भैया। अब रुक जाओ सर, खिलाड़ी अपन फोन लगे क्या बिना बात करे।
0: चलो भैया, तो बरसों बाद आपको फिर से स्वागत कर रहे हैं हमें कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: और जमुनिया गौड़ कहाँ है भैया?
1: जो सर अपनो बालाजी मंदिर है। हाँ वालो।
0: हाँ हाँ,
1: वही रोड जाना पड़ा था, उठे पड़ा थे 10-12 किलोमीटर।
0: सो आने आगरा है वो बारे रास्ता पे जाना पड़ा के रजगुआ बारे रास्ता पे?
1: रजगुआ वालो, अजनी वालो नहीं।
0: अच्छा अच्छा, रजगुआ। सो रजगुआ गाँव करके फिर और हुई 8-8 किलोमीटर है ना?
1: हाँ हाँ सर।
0: चलो ठीक है भैया, तो
1: आपकी टीम भी आ गई हमारे काम एक बार।
0: हाँ हाँ, वही हमें ऐसा नाम सुनो लग रहा हो तो ना भैया।
1: हाँ।
0: चलो तो चरण भाई का चल रहा हो अबे?
1: बस कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान बनाने का।
0: अच्छा, तो जो तो आपको ऐसा काम है भैया, 12 महीने चला थे है ना?
1: हाँ सर, 12 महीने चला था अपना काम।
0: चलो तो भैया, चुनाई को काम करत, जुड़ाई को के टाइल्स हाइल्स को करत, कौन सा काम करो थोड़ा आप?
1: अपन बिल्डिंग बनावे को हर करत, टाइल्स हाइल्स को नहीं करत।
0: चलो चलो भैया, तो आजकल कौन से चलाकी चल रही है, जो काम से आप जुड़े हैं उनमें कोई नया फैशन है का भैया?
1: सर वो का है ना, पुराना वो तो सब खत्म हुआ, सब इंजीनियर के लोगों पे चल रहा है।
0: पुराना कौन सा खत्म हुआ भैया?
1: जो पुराना काम है तो ना, जो मिस्त्री लोग घर धनी डिसाइड करते।
0: हाँ।
1: वो बंद सर, इंजीनियर बोला थे जो वो ही होते।
0: हाँ, बनाने के पहले अब इंजीनियरों से नक्शा बनाने लगे है ना?
1: हाँ, इंजीनियर से नक्शा बन जाते हैं और ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए।
0: बिल्कुल भैया, और सही भी बात है भैया, वे पढ़े लिखे जो विशेषज्ञ वो काम के हैं।
1: हाँ,
0: उनसे अगर अपन सलाह ले, उनसे नक्शा बनवाओ तो वो उचित रहते हैं ना?
1: हाँ सर।
0: चलो भैया, तो चरण सिंह जी, आपको काम अच्छो चले, आपको भविष्य उज्जवल हो, ऐसा ही आशा आकाशवाणी परिवार की तरफ से हमारे कर रहे हैं। और अब आते हैं अपन आज के अटका पे।
1: जी सर।
0: आज को अटका लेके आए हैं कि एक चिरैया मोती सी
1: हाँ।
0: बैठी बनकी डार।
1: हाँ।
0: और जो लो सूरज उंगे उंगे चिरई गई आकाश।
1: जो तो सर वो ऐसा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया, आपने जल्दी से उत्तर दे दो। और जो ही है भैया, सुनत रहो अपन इन अटकों को, इनमें अगर रुचि ले रहो तो अपन पे बन जाते है ना?
1: जी सर।
0: चलो तो भैया, बहुत बधाई के आपने उत्तर दे दो एको।
1: जी सर।
0: और अब बता दो चरण भाई अपनी फरमाइश।
1: वो सुनवा दो सर, गए नहीं बराते भाव नहीं है, ब्यावट करनी है।
0: भाव नहीं है अब?
1: अरे सर, हमारे संगवारों को नहीं भाव, सुनो सुनने आए।
0: चलो ठीक है भैया, तो आप सुनो, उनको सुनवाओ, आपकी फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं रामचरण यादव और इनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत कर रहे हैं आपको। अपना नाम बताओ।
1: प्यारे लाल प्रजापति, ग्राम कनेरा निखर से।
0: प्यारे लाल भैया, कनेरा निखर में क्या कर रहे हो?
1: सर कछु नहीं कर रहे हैं, बैठे रहे थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: और का रेडियो सुनत रहे थे।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया, बैठ के रेडियो सुन रहे हो। तो रेडियो में कौन से कार्यक्रम ऐसे लगा थे कि प्यारे लाल भैया को लगा कि जी तो हमैया बोल रहे हैं?
1: हमें तो सर सबसे अच्छी किसान वाणी लगा थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: हेलो किसान वाणी।
0: अच्छा अच्छा, वो में भैया अलग अलग विशेषज्ञ आउट हैं और नई नई जानकारी दे थे आपके लाने।
1: जी सर।
0: तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो कार्यक्रम में भैया जो आपको जानकारी मिला थे, तो

0: आप अपने आसपास के साथी किसानों को भी बताते हो कि नहीं?
1: जी सर बताते हैं।
0: क्या कि भैया ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अपन को मिले हुए तो वो जितनो बांट हो वो उतना ही बड़ा है।
1: जी सर।
0: तो ज्ञान खो बांट भी मैं कभी अपन को कंजूसी नहीं करने हैं।
1: जी सर।
0: और आकाशवाणी की सारी बात है सबको सुनाने हैं।
1: जी
0: प्यारेलाल भैया अब हम पूछ रहे हैं आपसे अटका।
1: जी सर।
0: अटका कह रहा है कि एक चिड़ैया मोती सी बैठी बन के डार, जो लो सूरज उंगो उंगो चले गई आकाश।
1: सर बाया ओस।
0: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं, ओस उर्दू में वो कहते हैं शबनम। तो भैया कैसे पता था वो आपने?
1: सर वो ओस पड़ा थे और सुबह रोहु थे जब सुबह ओस उड़ जा थे बाफ बने।
0: हाँ यानी सूरज निकलो और वो उड़ गई।
1: जी सर।
0: तो भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनने अपन को?
1: सर अच्छा देवी गीत सुनवा दीजिए तो अब नौ दिन का लगने ही
0: है।
1: उर्मिला पांडे को सुनवा दीजिए सर।
0: बहुत ही अच्छी बात है प्यारे लाल भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाओ जो देवी गीत।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096977।
2: करना करम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज, चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
3: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
2: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कौन करे लोग गीत सुने?
5: बिल्कुल भैया, कौन करे लोग गीत सुने? आप कोई बोल रहे भैया?
4: गुड्डू चौबे बोल रहा, बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
5: गुड्डू चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया फोन करे लोगी सुने में। एक पहले कभी लगो तो आपको फोन?
4: करीबन 3 महीना होगा, तुम तो देख ले, सोयाबीन भागो तो जब लगो तो सोयाबीन कटन लगो।
5: हाँ, हफ्ता खाड़ा में तो ही रहेगा भैया। चलो ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करी जाए भैया, सोयाबीन में कैसो करो आपको?
4: अरे पढ़ो खासो साहू जी, वो तो अब यहाँ सोया का मन समझा रहा है, अब किसान को कहूँ गया लंजा, कब बहुत कम फसल भाई है, बोलको पतो मार्गो दान हो मसरी क्या सो दान हो कर रहो।
5: मतलब भैया कई क्षेत्रों के किसान बता रहे के बहुत अच्छे रहो आसो सोयाबीन।
4: वो यहाँ सो रहो जगह हर जगह में वो कम दिनों को है।
5: हाँ।
4: तो अब तो फर गाओ जो जो तनक दिल लेट बारो है तो 10 दिन तो में एक रोग आओ है, 10 दिन बाद सुबह जी पूरा चाट रहो।
5: तो जो पानी की कमी के ऐसा हो का पानी की अधिकता के ऐसा हो भैया?
4: वो का भाव है साहू जी, जी सो अपन क्या नहीं लगा कि अपन क्या उसे आओ घाने में से एकदम से पानी पी ले, सो पहले महीना का अपने से पानी।
5: हाँ, हाँ,
4: तो फिर वो घेरो ले रेगुलर से वो बिल्कुल पड़ पड़ा सो फिर।
5: बिल्कुल भैया, एकदम से तापमान ऊपर भाव फिर मैं चल भाव।
4: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अपने खुद देखो सागर तो अपन तो अपना दी कई की है ले जाएंगे तो एक सी बार भाई एक महीना बिल्कुल नहीं भाई भाई तो खोलो ही नहीं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, मनो क्या करे भैया, किसानों को अपनी छाती बजुर की बनाने पड़ते ना।
4: जी जी जी।
5: और कई जात के बीती ता है बिसार दो और आगे की सुध ले।
4: जी जी,
5: तो आगे की का सुध है भैया, एक बाद की का तैयारी है?
4: अब तैयारी को तो अब जो है अब अपन जो कर है वो तो जैसे परीक्षा में नहीं कम नंबर मिला।
5: हाँ।
4: तो ये तैयारी अब ज्यादा कर रहे भगवान ही में ज्यादा कवर कर रहे हैं भगवान उनसे प्रार्थना है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और गुड्डू भैया आपके संग आकाशवाणी के भी सब लोग जय प्रार्थना आज नहीं हमेशा करे थे कि कृषि प्रधान अपने देश है, किसानों को काम बहुत अच्छे हुए, अच्छी उनकी फसलें हुए।
4: हार की नहीं मानत किसान का बहु ये मैं बिखाई जात तो बिल्ले सो पकड़ कर बैठा थे यहाँ के अंदर सो बना लो, अब जो कछु होगा सो
5: होगा भैया। बोल के अपने हाथ की बात हो तो अपन कछु करो।
4: आके केस लगा दे कहूँगा भगवान से, कहाँ केस लगा रहे प्रार्थना कर सक।
5: हाँ हाँ, फिर भी बीमा जैसी सुविधाएं तो चल ही रही है ना।
4: जो तो अपन कर रहे हैं मनो मिलने हैं तो मिल है ना, कहा पता कहाँ सुझे बीमा तो करवा लो तो किसी जी करवाए पाली कर ले तो किसी अपने आप
5: अपने आप किस्त कट जाती हुई है ना।
4: हाँ, हाँ।
5: चलो हालांकि हमें ये नहीं भैया, पूरे हमारे श्रोता जान रहे थे कि गुड्डू चौबे जी बड़े प्रगतिशील किसान हैं और उन्नत कृषि करत है और संगे संगे
4: आगे में भी बताऊ के रहते तुम्हारे विशेषज्ञ गाँव थे तो जो बीमा नहीं करे।
5: हाँ।
4: तो उनको प्रीमियम काटा के 300-400 रुपया का सो करवा ली।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: समय समय पे हर चर्चा होते खेती किसानी की बाजो बात सुना था तो किसान परेशान न रहे, बिना पढ़ो खेती कर सकत बहुत अच्छी अगर बाजो सुन है तो।
5: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया, और आपकी जो जो प्रेरणादायक बातें हैं जो निश्चित रूप से दूसरे किसान जो अपने मन गिरा लिए थे तनक तनक में उनको बहुत प्रेरणा दे है भैया आपकी जो बातें। और अब आई थे आज के अटका पे गुड्डू भैया,
4: आप बूझो बन है तो बते हैं।
5: बिल्कुल आसान है, आज सब जने बता जा रहे हैं।
4: हाँ तो बन है तो बता दे।
5: एक चिड़ैया मोती सी बैठी बन की डार और जो न सूरज उंगे उंगे चिड़ै गई आकाश।
4: धुआं उंगा तो न
5: लगभग उसी चीज है भैया, और आपके ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, शहर में तो थोड़ा आप कम दिखाई देते हैं।

0: एक बेरवा बोल जो
1: एक चिरैया मोती सी बैठी बनकी डार और जोलो सूरज उंगो उंगो चिरई गई आकाश। बस बस बस ठीक है भैया, ओ सही है।
0: भगवान के पास अनुमान लगा लेगा,
1: अटकाया भैया। देखो हमारो विश्वास हतो के गुड्डू भाई बते है
0: जी जी।
1: और आपने बताई और अब बता दो फरमाइश गुड्डू भैया।
0: फरमाइश आज अशोक चौरासी जा को लोग गीत सुनवा दे कौन।
1: तो ले गुड्डू भैया आप सुनो और हमारे सब श्रोता आपके संग सुन रहे हैं आपकी फरमाइश पे अशोक चौरसिया को गाओ जो लोग गीत।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट। खेती को दे नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720009677। ये शर्माने की बात नहीं है। अगर आप आइल्स फिशर फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल मेन तिली रोड पंजाब नेशनल बैंक के सामने सागर।
2: हेलो,
3: जय सियाराम सर जी।
2: जय सियाराम भैया, खूब खूब स्वागत कर रहे हैं आपको। फोन करें लोकगीत सुने में।
3: जी जी सर।
2: भैया अपना नाम बता दो।
3: उत्तम सिंह बघेल, ग्राम राजगढ़, तहसील करहरा, जिला शिवपुरी से बात कर रहा हूँ सर जी।
2: उत्तम सिंह?
3: हाँ।
2: तो भैया, उत्तम भैया,
3: हाँ,
2: अपने बारे में बताओ कछु आप।
3: सर जी, खेती किसानी करते हैं और अपने जी बकरी पालन का काम है।
2: अच्छा अच्छा, करहरा में?
3: हाँ।
2: तो करहरा से भैया बकरियां अपन चरावे कहाँ खो जाओ, कितने दूर खो निकल जाओ थे?
3: जंगल है बहुत ज्यादा।
2: अच्छा अच्छा भैया।
3: हाँ।
2: तो भैया आप तो जंगली जानवर भी बढ़ गए हैं, जो अच्छी बात है अपन की।
3: हाँ।
2: तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाता है कि भैया अपन उन जानवरों की भी देखभाल करें, अगर जंगली जानवर हैं, और अपने हाँ। पालतू पशुओं के भी।
3: जी जी जी सर।
2: हाँ, तो उनकी भी अपन को रक्षा ही करना है भैया, कि ऐसी जगह पे अपन को नहीं घुसने हैं जहाँ पे वे जंगली जानवर हैं जो उनको इलाको है भैया। सही कह रहे ना?
3: हाँ सही है सर। वो हमारे माधव नेशनल पार्क हमारे बगल से ही है। बिल्कुल
2: मालूम है भैया, लगो भाव है आपके करहरा से।
3: हाँ, अमोला की जंगल है।
2: हाँ हाँ, हम तो भैया देख के भी आया अमोला का जंगल।
3: हाँ।
2: तो भैया माधव नेशनल पार्क में बाघ तो है ही।
3: हाँ।
2: तो अब बताओ भैया कि आप कैसे अपनी बकरियों की रक्षा करा थो, और कैसे अपने आप को और कैसे जानवरों की सुरक्षा में काम करा थो?
3: वो क्या सर, माधव नेशनल पार्क ये मड़ी का डैम बन गया है।
2: हाँ देखो है भैया,
3: तो वो नदी के भराव के कारण वो बांकना है और हमारा गांव जातना है।
2: अच्छा अच्छा, तो नदी की वजह से भैया बहुत अच्छी सीमा रेखा बन गई है।
3: हाँ।
2: चलो भैया, बहुत ही अच्छी बात है। भैया आप जाना था कि हमारे एक अटका भी पूछा थे।
3: हाँ सर पूछे।
2: तो अटका क्या रहा है कि एक चिड़ैया मोती सी बैठी बन के डार, जोलो सूरज उंगो उंगो चिड़ई गई आकाश।
3: चिड़ैया मतलब सूरज उगा सो ही आकाश चली जाए।
2: यानी बा ऐसी चीज है कि सूरज निकले तो वो आकाश में उड़ जाऊ थे।
3: संकेत सर कुछ?
2: अब यही तो संकेत दे रहा भैया कि जैसे ही सूरज उगो और वह गायब हो जाते।
3: तो जो वेस्ट तो नहीं है।
2: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
3: हाँ।
2: तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे।
3: राम गोपाल नायक की जो देवी गीत सुनवा दे।
2: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, राम गोपाल नायक को गाओ भाव जो देवी गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो
2: हेलो,
1: आकाशवाणी सागर।
2: बिल्कुल आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम का नाम भी बताओ भैया।
1: फोन करें लोग गीत सुने।
2: फोन करें लोग गीत सुने। अब आप अपने नाम बताओ भैया।
1: सर हम जगथर से बोल रहे हैं, कल्याण अहरवार।
2: कल्याण अहरवार जगथर
1: जी।
2: कल्याण भाई कहाँ है जगथर?
1: जगथर सर बंडा की उतरती है।
2: बंडा से कौन तरपी?
1: बंडा से बराठा साइड तक।
2: बराठा
1: जी।
2: अच्छा अच्छा, तो जो बड़ा मार्ग जाते हैं जो लोग?
1: नहीं सर, बड़ा था तेवड़ा जो बंदा से बड़ा था तेवड़ा है जो आखिरी में होता है सर बिजली के पास ही।
2: चलो चलो ठीक है भैया, बिजली के पास कहा है ना?
1: जी बिजली के पास सर।
2: चलो तो कल्याण भाई
1: जी,
2: कहा चलत रहे थे आपको उतर जगथर में?
1: कुछ नहीं सर, दिखा नहीं है तो हम बैठे रहे थे।
2: अरे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया भैया?
1: नहीं सर, हम जन्म से नहीं देखा, जन्म से लेट रही है सर।
2: और इलाज विलाज कछु?
1: इलाज सर मैं बहुत करवाओ मनो काफी फर्क नहीं पड़ो।
2: चलो ठीक है भैया, हम हमेशा ऐसे जितने भी आप जैसे श्रोता आते हैं हम हमेशा कहते हैं कि हमारों की ये शुभकामना है भैया कि जल्दी कोई ऐसी तकनीक आए कि आप औरों की दृष्टि वापस आ जाए, है ना?
1: जी सर।
2: चलो भैया, और आपके गाँव को मुख्य काम का है?
1: सर मजदूरी करते रहते हैं सभी लोग। और
2: खेती बाड़ी
1: भी है सर।
2: और नौकरी चाकरी वाले आदमी?
1: पुलिस में भी है।
2: चलो भैया, और स्कूल चिकित्सालय आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह जो सब है होते?
1: जी सर, आंगनबाड़ी है, स्कूल भी है।
2: हाँ, और उत पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? सिंचाई के पानी की क्या व्यवस्था है?
1: सर पीने के पानी की व्यवस्था है, अब नल आने लगने से अब तो व्यवस्था है।
2: चलो, और सिंचाई को पानी?
1: सिंचाई को तो अब कुआई से धारा थी सब जाने कोनों के बोर है कोनों के कुआ है।
2: चलो, और आबादी की बात करें तो कितनी आबादी हुई है, कितने घर हुई है भैया?
1: घर तो सर बहुत है, बहुत बड़ा गांव है जगथर।
2: चलो तो ठीक है भैया, आज जगथर के बारे में बड़ी विस्तार से जानकारी हमने श्रोताओं को आपके माध्यम से दुआ दी। और कल्याण भाई अब चलते हैं अपन आज के अटका की तरफ।
1: जी सर।
2: आज को अटका लेके आए हैं, बिल्कुल पहली बात तो जहाँ के सरल है सबको बताओ जा रहे हैं। एक चिड़ैया मोती सी बैठी बन की डार, और जो न सूरज उंगो उंगो चिराई गई आकाश।
1: सर ओस सर।
2: हाँ बिल्कुल ओस, हमसे काय पूछ रहे हैं? बिल्कुल ओस, आपने सही उत्तर दो भैया।
1: जी सर, हम तो आपको नाम भी जाना थे हम तो।
2: चलो चलो भैया, अब हम भी आपको नाम जान गए कल्याण भाई।
1: जी सर, हमें आपकी आवाज बहुत पसंद है, अगर आप फोन वाले लोग गीतों में दोबारा आ गए तो हम दोबारा भी आपको फोन वाले कार्यक्रम सुना।
2: अरे अरे भैया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप खोज आप की कृपा है ना?
1: जी सर।
2: और का नाम से अब बता दो आप अपनी फरमाइश कल्याण भाई।
1: सर हमें वो मत फरवा रहे लोग भी सुनवा दी जो के जो हाथी से चीत रहा चिंदुआ जैसा बस में कर डाली मच्छर से मानो सारी।
2: चलो ठीक है, लो कल्याण भाई हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं आजाद सिंह यादव को गाँव भाव जो लोग गीत।

0: हेलो
1: भैया, फोन करे लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: खैरा सलैया से महेंद्र कुमार अहिरवार।
1: महेंद्र भैया, क्या कर रहे हो खैरा सलैया में?
0: सर कश्मीर किसानी कर रहा है।
1: भैया आवाज तो आपकी ऐसा लग रहा है जैसे आप 14-15 साल के हो।
0: सर पढ़ाई भी करा थे।
1: तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो?
0: सर अभी हम कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं सर।
1: वही तो भैया, यानी 13-14 के कहलाए आप।
0: जी सर।
1: तो किसानी कैसे कर ले भैया, किसानी में कौन सा हाथ बटाओ थो आप?
0: सर किसानी मम्मी पापा के संगे किसी मसीह सोयाबीन जी कटवा रहे थे।
1: हाँ हाँ।
0: और का
1: चलो
0: मसूरा वो कटवा लेते हैं थोड़ी।
1: हाँ हाँ। तो भैया जी, काटते समय किन किन बातों को ध्यान रखा थो आप?
0: सर फसलें काटते समय मुट्ठी बातों को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हंसिया है और मुट्ठी बातों को ध्यान रखनी चाहिए। सर
1: बताओ ना, मुट्ठी में से थोड़ी सी बता दो हमें।

0: इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फसल को अच्छी हसिया छिटलाएं और अपना हाथ बचा के फसल काटे।
1: हाँ अच्छा भैया, एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि अपन को अगर बूट पहन लें बड़े से और थोड़े से आहट कर दें काटवे के पहले, खर्र खर्र कर दें ऐड भैया, तो क्या होता है जहरीले जो कीड़ा मकूड़ा रहते हैं वे भी भग जाऊ थे, काहे कि उनको भी बहुत डर रहे थे। तो भैया इन बातों काहे कि आपको वहां पे तो बहुत पढ़ाई करने हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करने हैं, तो जो काम आपसे सरलता से हो जाए केवल वो ही करो, जो आपके मम्मी पापा कहें वो ही करो काम आप, है और बाकी तो पढ़ाई करो अच्छे से। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका। अटका कह रहा है कि एक चिड़ैया मोती सी बैठी बन की डार, जोलो सूरज उंगो उंगो चिरई गई आकाश।
0: सर ऑस्ट्रेलिया।
1: बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है
0: जी सर।
1: तो अब बता दो भैया कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे रहे हैं?
0: चंद्रभूषण पाठक को।
1: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: तो भैया हर चंद्रभूषण पाठक के गाए यही लोकगीत के संगे अब आज को फोन करें लोकगीत सुने अपने समापन की तरफ है
1: मनो भैया
0: मनो मनो मनो आज कितनी तरोताजगी लग रही है जैसे घर भैया
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: कैसे जब पूरे श्रोताओं से अच्छे से बात हो जाते हैं सब जने उत्तर दे दे
1: बिल्कुल सही
0: तो कितने अच्छे लगे थे
1: और एक अटका की खासियत जय रही की सभी ने उत्तर दे दो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सबने सही उत्तर दो
0: तो जब बहुत अच्छी बात है अच्छा और जो अपन कार्यक्रमों में अटका ले आते हैं और दोबारा से लेने को अपने मकसद भी जो रहे थे कि देखो लोगों को कितने याद है
1: याद रहे
0: बिल्कुल तो अपन अपने काम में सफल हो रहे हैं लोग अपनी संस्कृति की जो चीजें इनकी तरफ ध्यान दे रहे हो याद रखा था जब बहुत अच्छी बात है
1: मगर भैया आपको एक बात को ध्यान रखने के जब भी फोन कॉल करो हमरो के लाने तो शांति वाली जगह पे जहाँ पूरा नेटवर्क मिल रहा हो आपको उतने से करो
0: बिल्कुल जहाँ आपने बहुत महत्तम की बात कही और भैया अटका दोहरावे की परंपरा है तो जैसे भैया हम दोहराए नहीं थे
1: बिल्कुल भैया
0: कि एक चिड़ैया मोती सी बैठी बन की डार और जो न सूरज उंगे उंगे चिड़ै गई आकाश समझा दे की कछु जरूरत
1: बिल्कुल जरूरत नहीं भैया जो ओस की बूंदे आए
0: ओस की बूंदे आए और एक अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ओस हाँ हाँ और भैया आप चले चले तो आपको बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू
1: और हम भैया जयशेखर
0: कार्यक्रम को संयोजन हतो दीपक निषाद को और प्रस्तुति जयशेखर की तो भैया हरो एक कार्यक्रम के अगले अंकों में आप से फिर भेंट हुई है यही आशा के संगे अब हमारे चाहत है सब जनों से अनुमति
1: राम राम, राम।

फोन करें, लोकगीत सुने। अभी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे FM बैंड पर, ये आकाशवाणी सागर है। आपको याद दिला दें, आज शाम 4 बजे फोन करें लोकगीत सुने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी। आप हमें फोन लगा सकते हैं 240-845 इस नंबर पर, और सागर का STD कोड है 075-82। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार

की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नारायणलाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुत चर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी,
जिन्हें 1976 में

0: बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर,
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों, कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
6: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है। असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाँ, बहुत मजा आएगा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
2: वो वाली कहानी?
0: कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है?
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
3: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत

0: और यहाँ की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
1: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
0: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।

0: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैग टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: ऊंचाई पर
3: लोग साथियों को ठीक है, आप सबको भली भांति पता है कि यह मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है,
3: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
2: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल ले। पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साई साई करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मन बल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से

0: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफल मैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
1: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
2: बिल्कुल ठीक।
1: आंख में आंख डाल के फायर करो।
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वे भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
4: क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
3: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
1: दुर्गा माता।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
3: उनके रौद्र रूप और

जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।

0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
1: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
2: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली है।
3: आपको वहाँ ले चलते हैं।
2: वहाँ
3: पट्टी करवा लीजिए।
2: उनका बहना रुक जाएगा। आओ तो सही।
4: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
2: लेकिन जी, लेकिन
4: मशीन गन साधे यहीं डटा हुआ।
2: अरे
4: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
2: आप सुनो,
4: छुपा हुआ ना,
2: आप
4: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
2: लेकिन कर,
4: मैं खड़ा हूँ यहाँ पे,
2: कुछ नहीं होगा मुझे।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कुल घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
1: संजय भाई इधर क्या हो गया? संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
5: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।

हम सुन रहे थे कपिल शिफाई और मुमताज राशिद के द्वारा लिखे गए इस नगमे को, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जिसे पंकज उदास की आवाज में हम सुनने वाले हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्यार के गीत एल्बम से शुभा मुद्गल की आवाज में, जिसके गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मिलती है धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून। हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: देना साथ मेरा, वो हम ना पाए।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, दूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे शीशा एल्बम से यह नगमा जिसे मधुश्री ने गाया, गीतकार माया गोविंद और सीन ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा एज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, और एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनाशक्ति को डिस्कस कर रहा
1: हूँ। वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: और कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
6: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
5: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
7: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसको सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।

0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

0: हम सुन रहे थे गीत आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और अनवर ने, निदा फाजली की बोल और संगीत खयाम का।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: जो हम है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ

हम सुन रहे थे ये गीत आप तो ऐसे ना थे फिल्म से, हेमलता की आवाज में, निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया उषा खन्ना ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, जो कि है फिल्म स्वीकार किया मैंने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, निदा फाजली ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: सुन रहे थे देव फिल्म का यह गीत विजेता पंडित की आवाज में, जिसे लिखा निदा फाजली ने, आदेश श्रीवास्तव ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनहरी धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत नाखुदा फिल्म से, लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजों में, गीतकार निदा फाजली और संगीतकार खयाम। आइए सुनते हैं अगला गीत सपने टू फिल्म से, संजीवनी भिलांडे की आवाज में। अनुज कपूर ने इसे संगीतबद्ध किया और बोल है निदा फाजली के।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, हरजाई फिल्म से, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा एज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, और एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा
0: हूँ। वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे ये गीत चाहत फिल्म से कुमार सानू की आवाज में अनु मलिक के संगीत के साथ जिसे बोल दिए निगा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं एक और गीत निदा फाजली की कलम से निकला हुआ, जिसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने, जगजीत सिंह अलका याग्निक की आवाजों में, और फिल्म है तरकीब।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार। जीवन में कई बार कई बातें बड़ी जरूरी होती हैं और आज उन्हीं बातों में से एक जरूरी बात है कि हम आपको सुरीला सफर की इबारत सुना दें। इबारत कुछ ऐसी है, होश वाले नहीं थे जब, तब से मां का सहारा रहा है। वही तो है एक अपनी जिसके पास गुजारा रहा है। दिल ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ठिकाना रहा है। वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। नवरूप लेकर हर वर्ष आ जाती है वो,

देकर हमें रिझाती है। लगता है मानने लगे हैं हम उसकी, माँ फिर चुपचाप चली जाती है। खैर, ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब है, कहीं धूप कहीं छाव मिलती है। तो चलो ना, संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है।

हम सुन रहे थे ये गीत सरफरोश फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। आइए बात करते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसकर हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ, बहुत दर्द दिया है जमाने ने मुझको, सब कुछ झेल कर सिखाती है माँ। दोस्तों, किसी भी मुश्किल का किसी को हल नहीं मिलता, शायद घर से कोई अब माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ एक नाम या रिश्ता नहीं, पूरा संसार इस एक नाम में समाया है। जब पास होती है तो लगता है हमें किसी बात की चिंता नहीं, मेरे साथ हमेशा रहेंगी। हम उनसे रोटते हैं, मनाते हैं, जी भर कर बात नहीं कर पाते, लेकिन उनके जाने के बाद खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमें बहुत मजबूत बनाकर चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो आइए सुनते हैं इस माँ के नाम

दादी माँ फिल्म के इस गीत को हम सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। हमारे श्रोता बहुत सुंदर कमेंट करते हैं और वह लिखते हैं कि माँ वो है जिसके पास लौटकर आज भी मन बच्चा बन जाना चाहता है, जिसकी गोद में दुनिया की सारी थकान भूल जाते हैं और जिसकी आवाज सुनकर तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सच तो यह है कि माँ घर में हो तो घर सिर्फ घर नहीं सुकून बन जाता है, और आप मैं हम सभी सदा ही उसी सुकून की तलाश में रहते हैं, है ना। तो चलिए बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है और सुनिए ये गीत सुकून की तलाश में।

0: सही कहा आपने,
1: बहुत सुंदर चित्रण है इस गीत में गर्मी सर्दी बरसात दिल की चाहतों का। और आप सभी ने सही पहचाना, भूपिंदर गायक कलाकार भूपिंदर है। गुलजार की कलम से निकला यह गीत है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म है मौसम। हम बात कर रहे हैं माँ की, कार्यक्रम सुरीला सफर में। लेकिन बात करते करते सुन लेते हैं ये संदेश।
2: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
3: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
2: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर। आपने संदेश भेजे हैं बड़े सुंदर से। एक ने लिखा है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ नाम से ही खुशी का हर पल सा है। आज मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अगर कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे या दुख का पल हो तो बस माँ की याद आती है और खूब रो लेती हूँ, लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं उसे याद करके रो रही थी। ये तो जिसकी माँ है उसके हृदय की बात है। हमारे कौन श्रोता लिखते हैं कि सर्वोच्च इमारत माँ शब्द, सारे शब्द इस शब्द के आगे फेल है,

सब कुछ इसी शब्द में समा गया है। बिल्कुल सही। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ अपने आप में विश्वसनीय होती है, जिसमें हमारे हर प्रश्न का हल होता है। जिनके माँ होती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं होती वो जानते हैं। सही बात है। हमने हमारी इबारत में भी लिखा है कि दिल फुर्दूलता है, फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ही ठिकाना रहा है, वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत जिसे लिया हमने अदालत फिल्म से। बड़ी खूबसूरत सी गीत को हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और आप सबने सही पहचाना, संगीतकार मदन मोहन। हम बात कर रहे हैं माँ की, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान कितना भी अरबपति खरबपति अमीर हो जाए, दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन इस संसार में वो एक चीज नहीं खरीद सकता, वो है माँ और पिता। इंसान कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ बाप पहला नाम है जो बचपन से लेकर जीवन की हर दहलीज तक उनका प्यार हमें संभल देता है। माँ जिसकी गोद में हर उम्र में सुकून मिलता है, और नवरात्र में जब माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते हैं तो एहसास होता है कि माँ केवल ममता की मूर्त ही नहीं बल्कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर हमारे दिलों में हुआ है, और पूरी भक्ति के साथ सकारात्मक पूजा के साथ हवन की सुगंध पूरी फिजाओं में तैर रही है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि हर माँ सोते हुए अपने नन्हे शिशु पर लगातार नजर रखती है और उसे जान से बढ़कर प्यार करती है। आगे चलकर इसी तरह से त्रिलोक की जननी आदि शक्ति माता रानी से भी अनुभूति मिलती है। अज्ञान के नींद में समाये हम भक्तों को जगाती है और उनके सपनों को संजोए रखती है। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनते हुए आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से है, और ये जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब कहां कैसे देखी थी। बताइएगा जरूर। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमने आप सबसे पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सबने बताया कि ये त्रिमूर्ति फिल्म का गीत है। किसी ने बताया कि उन्होंने करतारपुर में देखी, किसी ने बताया भोपाल में देखी, किसी ने कहा अभी तक

नहीं देखी, सबकी अलग अलग बातें थी, तो सबकी अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। और एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी जो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़ी अच्छे से लिखा कि शहर आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बात तो बड़ी छूने वाली है और सच भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में निबंध में लिखते थे कि चलो चलो माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों के गाँव में। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया कि माँ जहाँ होती है वहाँ सपनों का गांव बसता है, वहाँ सिर्फ प्यार दुलार होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। बिल्कुल सही बात है। अब एक प्रश्न आप सबसे आ रहा है मन में, जो पूछा जाए, प्रश्न ये है कि आपने अपनी माँ की किस ख्वाहिश को पूरा किया है, या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर पाए, जरूर से बताइएगा। माँ इस धरती का आधार होती है, अपने अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइए ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी माँ की जो पूरी नहीं की, या ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी करके आप प्रसन्न हो गए।

नहीं कर पाए, परंतु उसके पहले हम ये संदेश पढ़ते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहते हैं भगवान सभी का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि उनकी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका सत्कार जगन्नाथपुरी धाम में हो, और उन्होंने यह कार्य किया। उसके लिए आपका आभार। अपनी माँ की हर बात को पूरा करना हम बच्चों का कर्तव्य होता है ना। तो हमारे एक और श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते, कहते हैं हमें लगता है कि हमने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि हमारी माँ जब भी हम कुछ करते थे तो कहती थी कि बस यही तो मैं चाहती थी। सच बात है, माएं ऐसी ही होती हैं। हम जो कह दें उन्हें लगता है कि बस वही सही है, और माँ इतना प्यार जो करती है। हमारी कोई श्रोता लिखते हैं कि द टाइम इज द बेस्ट हीलर बट नॉट इन केस ऑफ मदर, एज द टाइम पासेस आई मिस माई मदर मोर डे बाई डे। सच कहा आपने कि कहते हैं कि समय एक अच्छा हीलर होता है, लेकिन माँ के केस में नहीं होता। जब समय गुजरता है तो माँ को और याद करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सब रिश्ते पैसों के बने हुए हैं, पर माँ के रिश्ते का कोई मोल नहीं है। हमारे एक और श्रोता ने कथा लिखी कि हम छोटे थे, एक ही कंघी थी, जब माँ को बाल झाड़ना होता था तो उसे बहुत टाइम लगता था, क्योंकि माँ के बाल बहुत बड़े थे। स्कूल जाते समय समय हो जाती थी, और माँ को मुकेश जी भी पसंद थे, तो हमने बर्थडे पर सारे भाई बहनों ने पैसे इकट्ठा करके माँ को कंघी और मुकेश जी का कैसेट दिया था, और माँ खुशी के मारे रोने लगी थी। क्या बढ़िया बात है, माँ बहुत सुंदर चीज है। हमारे श्रोता ने इसी बात को लिखा है, और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी अच्छा इंसान बने और मेरी तरह विद्यादान का काम करे, और उनकी यही ख्वाहिश थी और यह इच्छा मैंने पूरी की है। कितनी बढ़िया बात है कि आप सभी अपनी माँ की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और जिनके पास उनकी माँ है उन्हें तो यह कार्य अधिकार से करते रहना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कहती थी जिंदगी में सफल हो ना हो लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, और उसी पर चलकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ जैसा दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, माँ ममता का सागर है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, हम ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये बड़ा प्यारा सा गीत है, और बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, ये आप बताइए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे पिया का घर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में आनंद पक्षी के बोल से सजा हुआ और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत पहरेलाल ने इस संगीतबद्ध किया। हमारे बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माने जिस तरह से हम लोगों को घर गृहस्थी में पाला है उस समय कोई और होता तो पता नहीं कैसे करता। मैं सब उन्होंने ही किया है, बिल्कुल सही बात है, बात सब संभाल लेती है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत बीमार थी, इलाज कराना था, दिल्ली लेकर आए थे और सेवा किए, मुझे पुणे जाना पड़ा और सेवा नहीं कर पाए, रहता है मलाल दिल में, कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि माँ की कितनी महिमा है यह हर किसी को मालूम है, पर देखकर समाचारों में पढ़कर सुनकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में कुछ औलाद अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बढ़िया गाना है, जीवन और जीवन की जीत पर लिखा है, संभवतः संगीतकार रविंद्र जैन नहीं, आप यहाँ पर त्रुटि बस है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है ना, बच्चे की हर बात हर ख्वाहिश जान लेती है और ख्वाहिश को पूरा करती है। जी हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ वैसे कई बार मेरे घर आई थी लेकिन वो उनके घर आना चाहती थी और वो आ नहीं पाई और अचानक से चली गई, ये दुख उनके मन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि साधारणतः अनेक बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में होती है, वो 9 भाई बहन है पर उन्होंने अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मम्मी बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी, उन्हें विविध भारती में स्वप्न चेहरे फूल सेवा में गीत सुनना था, वो फरमाइश उन्होंने पूरी करवाई थी। ऐसे ही विविध भारती का साथ और आपका साथ बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि माँ की बात को सुनकर हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत। और ये जो अगला गीत है, आप अपने संदेश भेजते जाइए और साथ में बताइएगा कि ये जो अगला गीत है इसके गीतकार, संगीतकार और गायक। अब 3 उत्तर देने हैं, गीतकार, संगीतकार और गायक, तीनों के नाम बताने हैं, सुनिए गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत कभी धूप कभी छांव। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत में गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों के नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इस गीत के गायक हैं कवि प्रदीप, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने। हमने हमारी भारत में लिखा है कि ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब है, कहीं धूप कहीं छांव मिलती है, तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं। यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है, तो चलिए मुस्कुराते हैं इस गीत के साथ। और हो सके तो बताइएगा कि इस गाने में आपको किस गायक कलाकार की आवाज सुनाई दे रही है। सुरीला सफर का ये अंतिम गीत।

0: पल।
1: हम सुन रहे थे ये गीत जमीर फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोल सपन चक्रवर्ती ने इसे संगीतबद्ध किया और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, किशोर कुमार की आवाज में था ये गीत।

अंतराल का समय पूरा हुआ, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संग, क्षमा कीजिए, सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है एसटी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अभिमान।

जंजीर फिल्म का गीत अब सुनते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: जंजीर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे वर्षन बावरा ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वोटों की कथित चोरी के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और लोगों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को देश का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि कान्हा में वन्यजीवों की अनेक प्रजातियां मौजूद हैं और प्रत्येक नागरिक को यहां की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्यजीव विरासत देखने के लिए जरूर आना चाहिए।
2: कान्हा हमारे देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा अभयारण्य है और बड़ा समृद्ध है। ऐसी सभी प्रजातियाँ चाहे लायन हो, लेपर्ड हो, मगरमच्छ हो, हाथी हो, सब प्रकार के जानवरों से समृद्ध प्रकृति के साथ अपने स्वच्छंद जिंदगी जीने के लिए आबाद हमारे देश के अंदर जहाँ 1200 जगह पुनर्जीवन मिला हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। चीता प्रोजेक्ट भी हमारा सफलता से चल रहा है। हमने जंगली भैंसे का भी पुनर्वसाहट का बहुत सफलता से एक प्रयोग चालू किया है।
1: भोपाल में आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव शुरू हो रहा है। रविन्द्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस उत्सव का शुभारंभ करेंगे। संस्कृति विभाग और श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास द्वारा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित यह उत्सव 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें देश विदेश के कलाकार विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों और कला विधाओं के माध्यम से श्री राम कथा के प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। इस उत्सव में मणिपुरी, सत्रिया, कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम सहित विभिन्न नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां होंगी। कार्तिकेय सिंह चौहान मध्य प्रदेश वॉलीबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। भोपाल में कल हुए चुनाव में उन्हें वर्ष 2026 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव में प्रदेश के 33 जिला संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने प्रदेश में वॉलीबॉल के विकास के लिए खेल नीति 2026 का प्रारूप जल्द तैयार करने की बात कही। खंडवा में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन शुरू हो रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस ग्राउंड में शाम 7 बजे समारोह का शुभारंभ होगा। पहले दिन ये शाम मस्तानी संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। वहीं कल 13 अक्टूबर को सुविख्यात अभिनेता रघुवीर यादव को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में 20 अक्टूबर से रात के समय ठंड बढ़ने का अनुमान है जबकि दिन में गर्मी का असर बना रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव समाप्त होने के बाद रात के तापमान में गिरावट आने लगेगी। फिलहाल अगले चार दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। कल रात इंदौर में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भोपाल में यह 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। शहडोल के विचारपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए दो दिवसीय चयन शिविर टाइगर आईकेएफ इंडिया खेलो फुटबॉल स्काउट ऑन व्हील्स कैंप कल से आयोजित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति विभाग द्वारा 14 अक्टूबर को रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप श्यामला हिल्स में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं नेदा का प्रदर्शन किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉ